0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने सुना, जो बाप दादा ने संस्कार उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाए। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका भय रिजल्ट तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहते हैं कि संस्कार के सब्जेक्ट में ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक, जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और पसंद, इसको कहा जाता है योग अगर नाभिशान समापन। मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, पसम होने के बाद नाम निशान कदम, तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ मास्टर सर्वशक्तिवान, आर्डर करो समाप्त करने की शक्ति आपके आर्डर से नहीं माने, ये हो नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे सोचते हैं कि अपने माँ बाप वतन में क्या करते हैं, सेवा

0: ese sacar ropame सदा बच्चों के साथ रहे ऐसे वतन में भी रहते बच्चों के साथ ही रहते अकेले नहीं रहते बच्चों के बिना को भी मजा नहीं आता जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सोचता नहीं ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सोचता अकेले नहीं रहते साथ में रहते साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहे जब चाहे साथ निभाते रहते जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना एक एक कॉपी के साथ उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया लेकिन ये इस समय का गायन है अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहे चाहे रात को 2 बजे या 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते साकार में तो सेंटर्स पर चक्कर लगाना कभी कभी होता लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते बाप को काम ही क्या है बच्चों को समान बना के साथ ले जाना यही तो काम है ना और क्या तो इसी में ही बिजी रहते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत उनके बनेंगे। संगम पर हर एक भगत भी बना रहे, योग दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बचपोड़ी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से करने वाला
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप दादा का याद सपने को देना बाप दादा देता है, और आप अपने आप को देना बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश। जैसे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं, तो जैसे
2: bye।
1: कुछ समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। Yeah.

be somebody there. घर बार छोड़ के नहीं गए, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब बाप ने अपना बनाया ब्रह्म जीवन दी, तो ब्रह्म जीवन का आप सबका वायदा मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कोटि बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कोटि हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Percentage yoga keys.

0: 见了。जीवन में परवाह, इसलिए चमक का खाता कोई कोई समय का जमा होता है, लेकिन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चों से यही चाहते हैं, बाप के प्यार का सबूत। समान बनने समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे। और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाए? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे बेकारी आत्माओं को ये समृद्ध आत्माएं इस बेकारीपन से मुक्त करो। Yes.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी से कम छह मास में अपने को जीवन मुक्त जीवन मुक्त स्टेज

मेरा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी अभी आज के दिन चेक करो मैं कौन, मैं फ्रिस्ता। यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन बोलो, करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही। सभी

నోట్ కన్నా.

ke citrome. Sada. Double touch. Toi pour me. Kaira.

que se vio. Shit, guys.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं हो। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं ना, बीमार हो गए तो रोना शुरू कर दें, दर्द हो गया दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी के बारे जी, जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया तो हिसाब किताब तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते, इसलिए हिम्मत वाले बन तो बाप भी मददगार बने, ऐसे नहीं रो रहे हैं क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो पापा तो मदद ही है, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत। पहले बच्चे की हिम्मत फिर बाप की मदद, तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं, तो आते अक्षर याद नहीं करो बाबा मददगार है, लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देखते ही नहीं। पहले आप शिकस्त नहीं मन और मन में अगर कोई कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है? ऐसे समय पर धैर्य शक्ति रोटी सर

Ik ken een zin in.

जब आप लोग खुद कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, परिवार में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी, लेकिन आप ट्रस्टी बन सकते।

0: मुसीबत की सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं ये मेरा मन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करते, ये मेरा बनाता है ना तो सब पाते, मेरा जहां भी आया वहां उत्तीक का फेरा हो जाता है, बदल जाती। अगर उत्तीक कहां भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरा पन, उसको चेक कर और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे। इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनेंगे। हाँ ये बात है, मन क्या नहीं बनेंगे, सब कहना नहीं करना है, समर्थ बन और सन शो
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को। क्योंकि बाप दादा देखते हैं, सोचो जो आप कोटो में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप चलेंगे तो साथ में सेवा के साथी भी तो ना मदद मिल जाएंगे। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अभी सिर्फ चलते बन जाओ। आप सोचते हो ना, हमें कल पहले भी थे, अभी भी है, और हर दो साल बनेंगे तीसरे साल जाएंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त है, हम ही कोटो में कोई, कोई में कोई है। कोटो में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: यज्ञ में हर एक का पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित्त सेवादारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता है। हर एक का पाठ अपना अपना महत्व है। कोई का भी पाठ अगर मिस हो जाता है तो फर्क पड़ता है। ये पाप का वरदान एक एक कामन पाठ दारी को भी जैसे भंडारी वाले वाला नहीं हो तो काम नहीं चले। सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। और क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चले। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं भी विशेष निमित्त हूं। ड्रामा ने हर एक को चाहे छोटा सा कार्य लेकिन वो भी जरूरी है। पांच अंगुलियां है, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा। तो यज्ञ की यही विशेषता है, जो भी जिसको पाठ मिला है ना वो बहुत बहुत बहुत जरूरी है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ, सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है, परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे, बात पावरफुल है कि खुशी परमात्म गिफ्ट, तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए। सदा फेस खुश दे मारे, खुश दे मां रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगे पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रायल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अलबेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्रह्मांडों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई कांटेक्ट मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती, इसके भी कोई है रहस्य जो this

achieved me, achieve master.

Listen.

Fremd die Meers.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से
4: जो

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा महीन मैं, जो सुनाया मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, अब महान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाती है उसमें भी जब बलि चढ़ाती है तो खुद नहीं बक बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। बकरे को क्यों ढूंढा? क्योंकि बकरा मैं ही करता है। भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी

0: और शरारत करके समाप्त कर सकते हो। बर्थडे पर आए हो बाप की तो कोई सौगात तो देंगे ना, तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए। आज के जन्मदिन पर बाप को सौगात दे दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

Lucio, sé que te napiares algo, ma tu fanno vasi, chi se va con te, sapot cusciute, lo qui che ti è, chi è concia la से मशीन चल रही है, तो मधुबन निवासियों की ये सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। मधुबन निवासी चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठ के मुरली नहीं सुना, लेकिन एग्जाम्पल बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको सब

से मुख से निकलता है, मधुबन से आई है, मधुबन से।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? समझा? समझा?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

钱。

इस कभी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा लगता है, उमंग है, लेकिन बातें छोटी छोटी बातें रुकावट डालती थी। अभी इसको मिटाने की कोशिश करूं, सोचते भी हो आगे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो जाती। अभी तक के रिजल्ट में जो सोचते अभी से परिवर्तन

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में निश्चय, सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए। पाप का भी आप सब में निश्चय, तब अपना बनाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा में नवीनता क्या लाएं? जो अभी तक सेवाएं चली हैं उसके अलावा अब नयापन क्या लाएं?
2: नयापन ये लाओ जो आने वाली है और लोगों नजदीक कम से कम स्टूडेंट तो बने, कभी कभी आने वाले संपर्क खुद बनावे, दिलो वे हमें ऐसी रिजल्ट आने वालों की होनी चाहिए। अभी आए अच्छा है,
1: संदेश तो बहुत मिल गया सबको, बहुत जा भी रहा है और मिल भी गया।
2: अभी नजदीक आना, कम से कम स्टूडेंट नहीं बने लेकिन आने वाले मिलने वाले सुनने वाले तो बने, कम से कम बोलने तो।
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा आज देख रहे थे एकाग्रता की शक्ति, अभी सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रैम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती, जब करना ही नहीं मिलता ना उनको, तो वो भी अलबेले हो जाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा की आवश्यकता है जो जेरी से नैनो से दो शब्द से अभी कोई

0: बड़े बर्तन कर ले, आज मन्ना की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बच्चे जो भी समा

शब्दों का एक मैं दूसरा मेरा करा बना शब्द से मैं मेरा समाप्त हो जाता। मैं निमित्त सच्चे दिल

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जय डॉलर को, जय पाउंड को, है तो पेपरी, तो पेपर कहाँ तो चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? डाउन मनी डाउन तो होनी है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा है मूल्यवान। जैसी शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था, एक तो समर्पण हुए ब्रह्मा बाप के साथ और अखबार में डाला रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो अभी भी जब चारों ओर ये स्थूल हलचल होंगे, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। के पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे, टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट

सुनते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिलेगी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: That's it.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

0: Attention to
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता भराओ, तो जो कहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज। इसमें मजा नहीं है, ब्रह्मांड जीवन है, मजे की संगम युग है, मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं, बोझ उतारने का युग है। चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो, तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार भी वाह वाह है, ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसा है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा, ब्रह्मांड जीवन अर्थात वाह वाह है न शरीर व्याधि में भी आए वाह, ये भी बहुत उतरता है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Ich zoppi.

Yoga, aber gesoffen.

Top Shop.

0: समय के सफलता का प्रलाप स्वतः प्राप्त हो जाती, इसलिए चेक करो खजाने मिले खजानों से संपन्न हुए लेकिन स्वप्रत व विश्व प्रत कितना सफल किया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है, क्योंकि बड़ी इतना बड़ी परिवार विश्व में किसका है। आप जितना परिवार चेक करो विश्व में किसका है। परिवार के रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं, वाह फॉलोअर या परिवार, परिवार के साथ ही सेवा में संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है, जानते हो ना। परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय होती हूँ चल रही है। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है और होगा। यादगार माला है, माला में देखो कहा एक नंबर और कहा 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार। इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक दो में एक परिवार एक बाप एक राज तो एक होके चलना है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना की स्थिति में स्थित हो चलना है। क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार स्वभाव आता है, लेकिन कोई समझे परिवार से क्या है, बाबा से तो है। लेकिन यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना, सिर्फ धर्म नहीं है, दूसरे जो भी धर्म पिता है उनका सिर्फ धर्म है, राज नहीं है। या तो आप सबको राज भी करना है तो राज और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना, परिवार को छोड़ कहाँ जा नहीं सकते।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समझती है कि बहुत जन्म के अलबेले पन के संस्कार पके है ना, तो हो जाता, लेकिन अभी अलबेले नहीं बन, नहीं तो फिर पीछे बताएंगे क्या होगा, अभी नहीं बताते, क्योंकि बाप दादा ने वर्तमान समय की रिजल्ट देखी सभी की, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट में देखा ये वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में अनेक प्रकार के अलबेलापन मन ही मन में सोच ले, सब चलता है। आजकल का ये विशेष स्लोगन है, सब बातों में सब चलता है। ये अलबेलापन साथ में दोरा दोरा बिना
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा भी देख रहे थे कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना क्या समय की पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए पूछो, अपने से ही पूछो। फिर दीवाला होगा।

March. What did this man? In March today.

0: सभी आत्माओं की पुकार 있었지나 아무도 피지 않네 말이 저 버리버리에 보이다 따버린 게 아무것도 없네 나이
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो यहाँ है खुशियों का संगम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन जैसे साइंस से आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की वृद्धि दृष्टि और सृष्टि को बदल से मधुबन में अनबॉक्स।

See.

0: उल्टी फिरती का वाइब्रेशन नहीं, अपने मन की फिरती सदा स्वच्छ, क्योंकि किसी भी आत्मा के
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बनाना राई भी नहीं, रोई

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मानस से, शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके चरचित्र क्या देते हैं, दुआ देते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं, दुआ मांगते हैं ना, जन्म में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Jim.

0: vocês. Tati, o quê? Pode ler. Tati, querida. Tu tá de legal. Que mochê.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ए ब्रको, सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक समय एक और चारों और देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम। लक्ष्य को अनुभव बना

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

Sí.

separarse.

जैसे सिस्टम में।

Sí.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Nossa.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इसलिए बाप दादा हर बच्चे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहूँ। और ये डबल प्रालंबित बना रहे आवश्यकता। अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवार दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाते हैं लौकिक काम करके, थक के आते हैं। क्या करें, नहीं खुशी खुशी में दोनों निभाओ। क्यों देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है, तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादी या जो निमित्त है दामन के ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, हाथ ड्रम लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते। हाँ उठाओ हाथ। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। पांडव पीछे बैठे, अच्छा है। आप निश्चिंत रहो, नंबर आप लोगों को वेस्ट ही मिलेंगे, जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होंगे करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं करा बना हार करा रहे, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ पावर के आधार पर चल।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

부스러운 거.

姐姐，我姐妹，阿拉被你们没抱得的，一头大爷，一头真大爷，真里头什么真的，把这把光写的。Oh, man.

0: 혼도 어딘 샹디나. 짓니 보라디 어디에나. 또, 니가 게
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

しっ。

Watch out.

Yeti. Orca.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है, था और है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप परमात्माओं के प्यारे

Peace.

Israeliti. Kasvar.

Zimmer.

I don't

见呐、啊。

Jesús.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना, ये तो हो नहीं है, पहले से पता है ये होना है। लेकिन बाप समान रिश्ता बनना ही है, समझा? करना है ना, करना है, करना है, कर सकेंगे। एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे, क्या आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पवित्रता ही मानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी संकल्प चलती है, तो कितना भी योग पावरफुल चाहती है होता है क्यों? सारा वैसे नहीं आसन जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसीलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्र मनसा को हल्का नहीं करना। क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी कभी लिफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये लेवतापन दातापन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसी अवस्था है

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: यज्ञ सेवा का फल बहुत बड़ा है, क्योंकि यज्ञ सेवा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं की सेवा, भक्ति में तो 8-10 ब्राह्मणों की भोजन खिलाया, कुछ किया, समझते बड़ा पुण्य हो गया। लेकिन यहाँ 10,000, 12,000, 8,000 ब्राह्मणों की सेवा का चांस मिलता है। यज्ञ पिता के यज्ञ की सेवा है। ब्रह्मा भोजन का यज्ञ का कणा बहुत वैल्यूबल है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Kaneciamak.

तीसरा खाता है। पुण्य

जो भी सेवा करते हैं, चाहे मानस से, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, चाहे संबंध में,

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Raten.

मेरे बाप दादा 20% छुट्टी देते है मंसूर, मंसूर है देवे, ये काम देवे। अच्छा 15 दिन माया भी सुन रही है, बातें तो आएंगी, बातें को नहीं देखना, पास होना है ये याद रखना। 15 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप दादा के पास हर एक सच्ची

खाने और कर्म में पास हो के दिखे। हो सकता है टीचर्स बताओ, हो सकता है। 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। क्यों कपड़ा?

0: Rayados. Rayados. Yeta, yeta. Y Rayados. A la vela, pan.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप को भी समझाने लगते हैं, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अभी तो हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा तसा शरीर है और

ऐसे टाइम पर क्या करे, मन भारी है और योग लगता नहीं है तो क्या करे। उल्टी नहीं करे, अंदर ही मचलता रहे।
creepy. Kissy me, Tarabu.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

संस्कारों, हिम्मत कभी नहीं हारो, कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है सदा हाजिर। आप हिम्मत से सर्वशक्ति

कैसे करूं, क्या करूं, नहीं।

चाहिए।

Mischief.

सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते।

Ścieba.

Tiens,

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोरियां सुनते हैं, रोरियां बहुत हिम्मत की करते हो। Check is out.

Adiós.

So.

कमजोर संकल्प लब इमर्ज नहीं करो। स्मृति रखो जन्म से।

is at God's saying. Yeah.

Shit. Hey. Ese.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं, या इच्छा पूर्ण करो या अच्छा आपके हाथ में, और देखा जाता है it।

ね。

吗？

Sí.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Happy.

kissa mig, bara.

Gel, gel, diyor kapı kapı. Kapı kapı.

sé. Que sí,

बेहोश करते और बाप होश में लाते कि तुम मेरे हो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: ஜனம்.
1: விசேஷ் பர்மாத்தா.
0: बच्चों के।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे और कर्म इंद्रियां जब चाहो जैसी चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी जो आर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा अभी ये चाहते हैं कि मन को बच्चों का ही तो गायन है, हर कलप की है। तभी गायन है क्योंकि जैसे और कर्म इंद्रियों को कलप करने जाओ वो बंधा हुआ है क्योंकि मेरा तो बाप दादा इस चले अगर आप शुद्ध संकल्प करने चाहते हो तो व्यर्थ संकल्प जाओ योग लगाना और संस्कार के कारण व्यर्थ संकल्प चले या योग की सिद्धि नहीं मिले ये कंट्रोल होना चाहिए। अगर एक घंटा योग लगाने चाहते हो तो मन डिस्टर्ब नहीं करे, क्या आत्मा मालिक है? मन मालिक नहीं है। बच्चों

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे टॉप की है, परम धाम बाप दादा कहते हैं, सेवा की और फिर टॉप की स्टेज पर आपके साथ आके बैठ जाओ, जैसे थक जाते हैं ना तो 5 मिनट भी का शांति से बैठ जाते हैं तो फर्क पड़ जाता है ना। ऐसे बीच बीच में बाप के साथ आके बैठ जाओ।

0: सृष्टि चक्र को देखो, सृष्टि चक्र में टॉप स्थान कौन सा है? संगम बारा की सुई टॉप पर दिखाते हो ना, तो नीचे आए सेवा की फिर टॉप स्थान पर चले जाओ। समझा क्या कर रहे हैं? समय आपको पुकार रहा है या आप समय को समीप ला रहे हैं? रचता कौन?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा विशेष संतुष्टता का शक्ति, संतुष्टता की शक्ति हर एक बच्चे में

にそっとした国家便ね以上Yeah.

Tenés que hacer mi opinión.

name.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट योग्यता के शक्ति धारण करने में सांची शक्ति की भी आवश्यकता है। सांची
3: संभालने के
2: टेस्ट में आते हो, लेकिन इस समय तक सारी कलम की प्रारंभ उतने मिलती जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की बीच डाला फिर बड़ा किया फल भी निकला लेकिन कच्चा फल खा के हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाए तो अलग काल के के लिए काफी नहीं करो यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा विल पावर। परमात्मा ने विल की है पावर्स की विल पावर, तो परमात्मा विल पावर के आगे पावर्स परिवर्तित होना कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ स्वयं में एक संकल्प होना ही है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, ये परमात्म टच उनके बुद्धि में जाने से रुकावट बन जाती, चाहे देश में चाहे विदेश में। क्यों, कैसा, ऐसा तो नहीं, इस संकल्प से कभी भी कोई कार्य अर्थ सामने नहीं जाओ। क्यों, क्या ऐसा वैसा, ये पहले आपस में सोच के फाइनल करो, वो बात अलग है, लेकिन जब सामने जाते हो तो सदा दृढ़ संकल्प से जाओ, होना ही है। आकर तो सभी को चुका नहीं, अभी सेवा में सकाश दे बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं चुकी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बात

0: samim. Ot na. Ot nene rupusi. Apane ashtra shastra. Use kar rahi hai karegi bhi. Phir aapke paon mein jhuke. Pehle aapko jhukane ki koshish karengi. Phir khud jhuk jayenge. सब अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो, कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना बिट नहीं जाए, कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो, हम माया को प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तित नहीं कर सकते?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सबके आगे अपना अनुभव सुना। नास्तक से आस्तक कैसे बना, बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारियां देती है, ब्रह्मा कुमार देते हैं, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोलने के लिए। अगर एक पॉइंट रही हुई है गीता का भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होंगे ना। जब ये सिद्ध हो तब कहे भगवान आ गया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: फॉलो कर।

Chico.

Feeling.

समझते हो।

Ishan Kononga Jaki Chirawonga Vai Pare Shanongena Toh Osa

ngerti. Kosam.

ese swarov me tengo. Sahan Shildaki Devi. Sahan.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पहले बार आई हूं तो कमाल करो, क्या कमाल करो, पहले नंबर का पुरस्कार ऐसे भी निकलने हैं तो आप ही दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है, दीवार पुरुषार्थ आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, दीवार पुरुषार्थ करो, करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है, ये दृढ़ संकल्प।

कोई एग्जाम्पल निकलने में।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहाँ भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Talking is

Die haben Kopf bedeckt.

समृद्धि में चलती है। आप सभी अनुभव से कहते हो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मददगार जो हिम्मत का पहले पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाने और श्रम को बाबा आप कर लो ना बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा ठीक है पहले पाँव तो रखो, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा। इसलिए इस सब वर्ष पे हर समय ये शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले वाह, जैसे हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना और आप बच्चों का समझती है।

7.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना शान नहीं होता है तो आपका भी परिवार ना। तो बहुत बढ़ रहा है

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर तोड़े की अपने अपने है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर अल्लाह पहले नेचर नहीं अल्लाह पहला बना अलग चीज है इसी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा सर्कमस्टेंस उसको परखते हुए अपने को इसी कर देवे इसी अर्थात मिलनसार इट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं और समय पर जब समय ऐसा है उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन जाता है तो वो कुरक के बजाय विशेषता नहीं उस समय लगती अपने को मोल्ड कर सके मिलनसार हो सके छोटा हो बड़ा हो बड़े से बड़ेपन में चल सके छोटे से छोटेपन में चल सके साथियों में साथी बन के चल सके से रिकार्ड से चल सके बोल्ट कर सके इसी शरीर भी इसी रखते है ना तो मोड़ जाते है जहाँ भी मोड़ने और टाइट होगा तो मोड़ नहीं सके अल्लाह बेला भी नहीं इसी है तो चाहता इसी हो जाए अल्लाह बेला हो जाए नहीं बाप दादे ने कहा ना इसी हो जाओ इसलिए इसी हो गए ऐसे नहीं करना इसी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी इसमें तो बात कि सबके दिल में बाबा की याद है, कभी भूल भी जाती है कोई हिसाब किताब के कार, लेकिन मैं जा रही थी थोड़ा भूलती है। मेरा बाबा ये जिगर से इतना पक्का हो गया है, जो चलते फिरते सब करते, मेरा बाबा मेरा ये भूलता नहीं। और बाप को भी क्या याद रहता मेरे बाप।

जीवन में साथी याद रहते हैं, लेकिन यहाँ हर एक के दिल से पूछो दिल में कौन।

0: del meco. मेरे बच्चे ये संबंध संगम युग की सौगात
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जैसे पाप अशर रेडियो।

сочные ощущения, мана.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप सेवा के बिना रहता है, याद के बिना भी नहीं रहता। जितना पाप याद में रहता उतना आप मेहनत से रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और पाप के लिए है या परम आत्मा के लिए है? आत्मा है, नंबर वन आत्मा है तो है स्वयं बच्चों के याद के पाप रह नहीं सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे साइंस वाले

0: जाएंगे, कर लेंगे नहीं, हो सकता है कि मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं, तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विदानर बनेंगे ना, परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पर रही है, तो पास में तक आनर बनना ही है ना, पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विद आनर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए, टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता, मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होती है ना, वो ऐसे होती है जैसे पता नहीं कहाँ गायब है, देख भी रही है लेकिन गायब, बोल भी रही है लेकिन गायब रूप में बोल रही है, वो चेहरा अच्छा नहीं, चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, सीरियस नहीं चेहरा करना, क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो, बहुत मेहनत है बहुत काम है सीरियस हो जाते हो, लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना, मुस्कुराना आता है ना, आता है, आपके चलचित्र देखो कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या, अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है, अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता, इसलिए

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज करते गए, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़े बड़े है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता, अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे और माला तैयार हो जाएंगे। कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितने सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़ी है, अच्छी आगे बढ़ी है, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है, वो यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण वो है निर्माण और वो है निर्माण मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर, सेवा के उन्नति में निर्माणता के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अपमान भी मिक्स हो जाता, इसकी अभी आवश्यकता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृद्धि में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इसलिए बैलेंस ये तो है, ये सर ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्रह्मन आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अगेंस्ट को एडजस्ट करो, ये निर्माण और निर्माण का बैलेंस।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है।

Sss.

आगे बढ़ेंगे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय पर मान सबको बेहद के फैराग फिरती में जाना ही होगा। समझती है कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय शिक्षक बनाना। माँ बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद की फैराग हाथ से अंत तक रहा। मेरा तन लग रहा है, मैंने तन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव, अपने ऊपर

हंसी आएगी ना तो जो किट किट करती हो ना वो खत्म हो जाएंगे। इसको कहती है भाषा का परिवर्तन करना, अर्थात हर आत्मा के प्रति स्वमान और सम्मान। स्वयं भी सदा स्वमान में रहो और को भी स्वमान से देखो। स्वमान से देखेंगे ना तो फिर जो कोई भी बातें होती जो आपको भी पसंद नहीं है, कभी भी कोई किट किट होती है तो पसंद आता है नहीं आता है ना, तो देखो ही एक दो को स्वमान से। ये विशेष आत्मा है, ये पाप के पालना वाली ब्रह्मा समा दो। बस एक बिंदी से तो देख।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, ये रायल रूफ के मैमे के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वो ही ठीक है, मैंने जो सोचा वो ही ठीक है, वो ही होना चाहिए। ये मैं बन धोखा दे देता। सोचो भले, कहो भले, सबको याद है मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा? मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप, तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई। इस

know. Jesse Bob Dada. This.

0: 听不见。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब दादा अभी क्या चाहते? हर बच्चा ready।

fortsätter. Känner ni? Och då what's up?

second her sankalap check karo mano apna devar purusharth nagar ek ghanta sadharan purusharth mein rahe कितना नुकसान करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मालिक सदा मालिक होता है।
2: कितने वर्षों से जुड़ा
1: हूँ? अमृत वेले उठ के जितने बजे भी उठ सको, तो अमृत वेले बाप को याद करके रोज बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेते रहो, बाप से आशीर्वाद मिलेगी, जिसे खुश भी रहेंगे, निर्विघ्न भी रहेंगे।
2: मेरे ऊपर निर्भर उनको भी आशीर्वाद मिल जाएगा, जो मेरे ऊपर निर्भर है
1: वो भी ठीक, सब ठीक हो जाएंगे। आप में शक्ति बढ़ेगी, दोनों को भी शक्ति बढ़ेगी, हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़ा उठ के बाप को याद करके शक्ति लेते रहो। मेरा बाबा कह के और शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

fund me.

खेल में वो खुशी की झलक सेवा पुण्य बन रहा है। उसमें चेहरे में खुशी होनी चाहिए, किसी न किसी प्रकार

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes, sir.

snake.

0: happy. Up come Sayogi, banne ke liye tayar.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं, और द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है, आ सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और
3: मानो
2: ढेर लोप गए। चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर, दोनों में राय लोप माया लाने का फल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी सब में अच्छा, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राय लोभ आता कि मैं इतना कुछ करता हूं सब रूप से मदद करूं, धन से मन से

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Jacobin, Bob Dada, 60 Xadjel, Red Ranger, Piche Piche, Nairage.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Revise.

Jeanne.

0: 좋잖아.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: उसका कोर्स कराना, शक्ति बढ़ने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति बढ़ने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहीं नहीं लेकिन अच्छा बन जाए, ये वर्णन करें कि आज मुझे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

姐。

Saat eh, wafizai benak ya muskil.

0: बनना। जो याद में रहता उसके लिए अति सहज मुश्किल नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के प्रति भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ के कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
4: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
3: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा, सोचेंगे ना ये करूं नहीं करूं नहीं करूं करूं, मैं टाइम नहीं देता। आजकल समय है, अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
4: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
3: बस 10 मिनट आप सब निमित बने हुए आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है, सहज हो सकता है, सिर्फ हो जाएगा, हो जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Peace.

0: हो जगाएंगे उनका अनुभव भारत वालों को जगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, हर बच्चे को बेफिक्र बच्चा वाले भी है।

छोटा सा फर्क।

0: अब मेरा क्या रहा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Acır.

Sabika.

Erde. Yeah.

情緒。お好き。

Sirwani. Exercise mein busy karo.

0: सर साइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है। ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कलब की मुश्किल नहीं होता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।